रिद जप जप जीवे रिद जप जप जीवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੁੱਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਹੋਈ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ ਰਾਉ ਕਾਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਜੈਸਾ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰ ਤੈ ਹਮ ਤੈਸੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਮਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀ ਆਸਵ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜਿਨ ਦੀ ਆਸੋ ਚਿਤਨਾ ਆਵੈ ਮੋਹਿ ਅੰਧ ਲਪਟਾਣਾ ਜਿਨ ਕੀ ਆਸੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਭਗਤ ਕਰੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਵਹੂੰ ਚਰਨਾ ਤਲ ਉਪਰ ਆਵਹੂੰ ਐਸੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਉਪਰ ਸਭ ਜਾਣਹੂੰ ਤਾਉ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹੂੰ ਸੰਤ ਹੋ ਐਸੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਰ ਦੇਵ ਪਵਿੱਤਰ ਆਉ ਖਿਲ ਬੋਲੈ ਖਿਨ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਖਿਨ ਬੋਲਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ ਪਰਪੰਚ ਛੋੜ ਸਹਿਜ ਕਰ ਵੈਸੋ ਝੂਠਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਹੋ ਨ ਵੈ ਨਿਧ ਪਾਵਹੂੰ ਇਨ ਬਿਧ ਤਤ ਬਿਲੋਈ ਪਰਮ ਚੁਕਾਵਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਆਤਮ ਚੀਨਹੁ ਭਾਈ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਜਰੂ ਕਿਸ ਸਿਉ ਕਰਹੁ ਬੁਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਰਗ ਮੁਕਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਿਨੀ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਵਤ ਹਰਖ ਨ ਜਾਵਤ ਦੁਖਾ ਨਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਰੋਗਨੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਬਯੋਗਨੀ ਇਹ ਬਿਧ ਹੈ ਮਨ ਜੋਗਨੀ ਮੋਹ ਸੋਗ ਰੋਗ ਲੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤਹ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਨੀ ਰਾਉ ਸੁਰਗ ਪਵਿੱਤਰਾ ਮ੍ਰਿਤ ਪਵਿੱਤਰਾ ਪੈ ਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਲੋਗਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪੁੰਚੈ ਕਾ ਜਤ ਗਤ ਪੇਖੋ ਹਰ ਗੁਣੀ ਨਹਿ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨਾ ਤਹਿ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਦਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ ਕਾ ਅਖ ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸਾ ਜਹਿ ਅਵਗਤ ਨਾਥ ਅਗਮ ਤਣੀ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿ ਕਾ ਤਨ ਸਭ ਹਰਿ ਕਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਗਣੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਖੋਈ ਹੈ ਅੰਬੈ ਅੰਬ ਮਲੋਗਣੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਾ ਜਾਣੈ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਖਜਾਨੈ ਅਚਰਜ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਵਸਤੈ ਗੋਚਰ ਭਾਈ ਰਹਾਉ ਮੋਲ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਕਰਨੈ ਜੋਗਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੈ ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕਉ ਸੋ ਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜੋ ਪੇਖੈ ਤਿਸ ਬਣ ਆਵੈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਣੈ ਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗਤਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ ਐਸਾ ਰਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ ਲੁਟਿਆ ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸਮਾਣੀ ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਉ ਚੀਤ ਨ ਆਵਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾ ਸਿਰ ਉਪਰ ਰਖਵਾਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਤੈ ਸੁਆਮੀ ਇਕ ਨਾਮ ਕੈ ਆਧਾਰ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ ਊਨ ਨ ਕਾਈ ਬਾਤਾ ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਛੋੜ ਨ ਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਖੋ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਚੇ ਲਖ ਅਪਾਰਾ ਅਤੁਲ ਅਥਾਹ ਡੋਲ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਅਵਚਲ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਕਦੇ ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ ਤਾਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ ਏਕਾ ਏਕਾ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕਾ ਏਕਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਉ
तुम सागर हम हंस तुम्हारी, तुम महमानक लाला, तुम देवो तिल शंक न मानऊ, हम भूल पुंच सदा निहला। हम बारक तुम पिता हमारी, तुम मुख देवो खीरा, हम खेला सब लाड लडावहा, तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूरन पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग अगाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहे आ, नानक कहन न जाई। राम कली महला पंजवा। कर कर ताल बखाव जिनैन हो, माथ बजै रबाबा, करनो मद बासुरी बाजै जिहवा तुन आगा जा। निरत करे कर मनुआ नाच, आने कुंगर घसाजा, राम को नृतकारी पेख पेखन हार दयाला, जेता साज सिंगारी राव। आखार मंडली तरन सुबाई, ऊपर गगन चंदोआ, पमन विचोला करता केला, जलते उपत होवा। पांच तात कर पुत्रा की ना, किरत मिलावा होवा, चंद सूरज दो जरे चरागा, चौंकुंट पीतर राखे, दस पातों पांच संगीता, एक पीतर साथे। पैन पैन होए पाव दिखावे, सब हुन बनरारी पाखे, कर कर निरत होवे दिन राती, कट कट वाजै तूरा, एक नचावे एक पवावे, एक आए जाए होए तूरा। कहो नानक सो बहुर न नाचै, जिस गुर पेटै पूरा। राम कली महला पंजवा। ओंकार एक तुन एकै, एकै राग अलापै, एका देसी एक दिखावै, एको रहिया ब्यापै, एका सुरते काही सेवा, एको गुरते जापै, पलो पलो रे कीर्तनिया, रामा राम रमा गुण गाओ। पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सुआउ राओ। पंच बजित्तर करे संतोखा, सात सुरा लै चालय, बाजा मान तान तज ताना, पाओ न बीगा कालय। फेरी फेर न होवै कभी, एक शब्द बंद पालय, नारदी नरहर जान हदूरे, कुंगर खड़ग त्याग वसूरे। सहज आनंद दिखावै भावै, एहि निरतकारी जन्म न आवै। जे को अपने ठाकुर भावै, कोट मद एहि कीर्तन गावै, साध संगत की जावुं टेक, कहो नानक तिस कीर्तन एक। राम कली महला पंजवा। कोई बोलै राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया कोई अड़लाए, कारण करन करीम कृपा तार रहीम राव। कोई नावै तीर्थ कोई हज जाए, कोई करै पूजा कोई सिर नवाए, कोई पढ़ै वेद कोई कतेव, कोई उड़ै नील कोई सफेद, कोई कहे तुरक कोई कहे हिंदू, कोई बांछ पिसद कोई सुर गिंदु, कहो नानक जिन हुकुम पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा। पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रुबन हारे की कवन टेक। कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म मेल ज्ञानी मेल करूं बिचारा, ही तो चलत पया राऊ। अगली किछ खबर न पाई, रोबन हार पे ऊठ सदाई, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंद। एह तो रचन रचया करतारु, आवत जावत हुकम अपारु, नह को मुआ न मरणै जोग, नह बिन सय अविनाशी योग। जो एह जानो सो एह नाही, जानन हारि कौ बल जाऊं, कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे न आवै जाया। राम कली महला पंजवा। जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवहै, फिर न खाही महाकाल राउ। कोट जन्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म आयो, बड़े भाग साध संग पायो, बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखै विचार। राग राम कली महला पंजवा, कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद।
चार पुकार है ना तू माने काट खट पी एक बात बखाने दस अष्टी मिल एको कहे ता पी जोगी भेद न लया किंकुरी अनूप वाजै जोगिया मतवारो रे रहाओ प्रथमे वसया सतका खेड़ा तृतीय महे किश पयाद तेड़ा द्वितीया अर्ध अर्ध समाया एक रहया ता एक दिखाया एक सूत परोय मणिए गांठी पैन पैन पैन पैन तणिए फिरती माला बोबिद पाए खिंचया सूत न आई थाए चह मैं एक मठ है किया तह बिखड़े थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया यों किंकुरी अनूप वाजै सुन जोगी कै मन मीठी लागै रहाऊ दूजा राम कली महला पंजवा तागा करक लाई थिगली ना लो नाड़ी सुवाह अस्ती अंबे का कर डंडा धरिया क्या तू जोगी गर्भ है परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाऊ गहरी बपूत लाई बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांग टूका तृप्त न पावे नाथ छोड़ जाचे लाज न आवे चल चित जोगी आसन पेरा सिंगी वाजे ने तो दासेरा गुरु गोरख की तै बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंथा नामे बस्त्रउ जन नानक जोगी होवा आस थेरउ यों जपया नाथ दिन रहनाई हुण पाया गुर गोसाई रहाऊ दूजा राम कली महला पंजवा कर्ण करावण सोई आन न दिसै कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख विरल किन विरल डीठा रहाऊ निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भई न काम तन मन शीतल अगण्य निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देव जा सब किश तेरा सदबल हार जाऊ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच नवाजिया खोल के वारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हाँ तेरा तू मैं मन बूठा राम कली महला पंजवा सेव कलायो अपनी सेव अमृत नाम दियो सो मुख देव सगली चिंता आप निवारी तिस गुर कौ हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाऊ महमा जाके गहर गंभीर होए निहाल दे जस तीर जाके बंधन काटे राय सो नार बहोर न जोनी पाए जाके अंतर प्रगट्यो आप ताको नाही दुख संताप लाल रतन तिस पाल लै परया सगल कुटंब ओह जन लै तरया ना किश भरम न दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जात कात देखो आप दयाल कहो नानक प्रभ मिले रसाल राम कली महला पंजवा मन ते छुटकी अपनी धारी प्रभ की आग्या लगी प्यारी जो किश करे सो मन मेरा मीठा ता यही अचार्य नैनो डीठा अब मोहे जानी रे मेरी गाई बलाई बुझ गई दर्शन निवारी ममता गुरपूरै लियो समझाई राउ कर कृपा राख्यो गुर शरणा गुर पकराए हर के चरणा बीस बिसवे जा मन ठहराने गुर पार ब्रह्म कही जाने जो जो कीनो हम तिसके दास प्रभ मेरे को सगल निवास ना को दूत नहीं बहराई गाल मिल चाले कह पाई जा को गुर हर मुदिये सुखा ता को बोर न लागे दुखा आपे आप सर्ब प्रत पालु नानक रातो रंग गोपाल नानक रातो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा मुख ते पड़ता टीका सहत हृदय नाम राम नहीं पूर्ण रहत उपदेश करे कर लोक दृढ़ावै अपना कहे आप ना कमावै
पंडित भेद विचार पंडित, पंडित भेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित राव। आगै राख्यो साल ग्राम, मन की नोंद है दिस विश्राम, तिलक चढ़ावे पाई पाई, ए लोक पचारा अंध कमाई। खट कर्म अर आसन धोती, भागठ गृह पड़े नित पोथी, माला फिरे मंगे बपूत, ए बिद कोई न तरियो मीत। सो पंडित गुर शब्द कमाई, त्रैगुण कियो उस उतरी माई, चतुर्वेद पूर्ण हर नाई, नानक तिसकी शरणी पाई। राम कली महला पंजवां, कोट विघन नहीं आवे नेर, अनक माया है तांकी चेर, अनक पाप तांके पानी हारू, जां को माया पैद करतार। जिस सहाई होए भगवान, अनक जतन उवांकै सरंजाम रहाऊ। करता राखै कीता भौकौण, कीरी जातो सगला पवन, बेअंत महिमा तांकी केतक बरण, बल बल जाइए तांके चरण। तिनकी तिन ही किया जप तप ध्यान, अनक प्रकार किया दिन तिन दान, भगत सोई कल मह परवाणु, जा को ठाकुर दिया मान। साध संग मिल पए

अल्लाह पंजवां देश दोष न दीजै काहूं लोग, जो कमावन सोई हो भोग। आपन कर्म आपे ही बंद, आवन जावन माया तंद। ऐसी जानी संत जनी, प्रगास पया पूरे गुर बचनी राउ। तन तन कलत मिथ्या बिसथारु, हैवर गैवर चालन हारु। राज रंग रूप सब कूर, नाम बिना होए जासी तूर। भरम भूले बाद अहंकारी, संग नाही रे छगल पसारी। सोग हरख मह बिहि बिरधानी, साकत अभी करत बिहानी। हर का नाम अमृत कल माहे, हिन दाना साधु पाहे। नानक गुर गोविंद जिस तूठा, कट कट रमैया तिन ही डीठा। राम कली महला पंजवां। पंच शब्द तह पूर्ण नाद, अनहद बाजिए चर्ज बिस्माद। केल करहे संत हर के लोग, पार ब्रह्म पूर्ण निरजोग। सुख सहज आनंद भवन, साध संग बैस गुण गावहीं। तह रोग सोग नहीं जन्म मरण राउ। ऊहा सिमरह केवल नाम, बिरले पावै ओह विश्राम। भोजन पाउ कीर्तन आधार, निचल आसन बेशुमार। डिग ना डोलै कतहू ना तावै, गुर प्रसाद को एहि महल पावै। ब्रह्म पै मोह न माया जाल, सुन समाद प्रभु कृपाल। ताका अंत न पारा वार, आपे गुप्त आपे पासार। जाके अंतर हर हर स्वाद, कहन न जाई नानक बिस्माद। राम कली महला पंजवां। भेटत संग पार ब्रह्म चित आया, संगत करत संतोख मन पाया। संतां चरण माथा मेरो पावत, अनक बार संतां डंडावत। एह मन संतन कै बलहारी, जां की ओट गही सुख पाया। राखे कृपा तारी राउ, संतां चरण तोए तोए पीवा। संतां दर्श पेख पेख जीवा, संतां की मेरे मन आस। संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा। संत प्रसाद मोहे कबहू न कड़दा। संतां संग दिया कृपाल, संत सहाई पई दयाल। सुरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास। जी जंत सगले प्रतपाल, नानक संत देख निहाल। नानक संतां देख निहाल। राम कली महला पंजवां। तेरा काज न अंग्रह राज माल, तेरा काज न बिखे जंजाल। इष्ट मीत जान सब शलै, हर हर नाम संग तेरा चलै। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहै। हर सिमरत जम कछ न कह राउ, बिन हर सगल निरार्थ काम। सोयना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन मुख सुखा। इहां उहां तेरो उज्जल मुखा, कर कर थाके बड़े बडेरे। किन्ही ना किए मकाज माया पूरे। हर हर नाम जपै जन कोए, ताकि आसा पूर्ण होए। हर भगतन को नाम

प्रकाश गोरमत नामिरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राव हर जन केवड भाग बढ़ेरे जन हर हर उशरदार प्यास हर हर नाम मिल त्रपता सह मिल संगत गुण प्रकाश जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास

पंजवां काही री मानो चितव उद्यम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जंतो पाई दंका रिज का गय कर धरया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद।

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार।

डूबी अले मान एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ ना हाओ जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक दिन की शरणा जन तो नाही विसरया। आस्था महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजा मिलाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध न जान्या हर राया।

पातशाही दसवीं कव्योवाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण रघुद रह हमारा अपना जान करो प्रत भारा हमरे दोष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दय मोहे बचाव हो सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दय करे आए सब बैरन कौ आज सिंघरे आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अबर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ दय मुझे भरे आए मरण काल का त्रास ने भरे आए हू जो सदा हमारे पछा सरियस्त जू करे और अच्छा राख लेह मोह राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबधरा काल पाए शिव जू अवधरा काल पाए कर विष्णु पर गासा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जबन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहीं हमारा जबन काल सब जगत बनायो देव दैत जश्न उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबद कियो कट कट के

कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, खट खट के बट बट की जाने। जब उद करख करा करतार, प्रजा तरत तब देह अपार। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही तेरह तंदर आलम, जानत बेद भेद अरे आलम।

न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का जीन तन पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पैन पैन तो है तेती।

Suyam Baba Abrachame Ritam Karo Seko Bharya Sek Sangaro Doshyate Otvadot Bata Sakalam Lesh Karo Ran Kata Jeyas Tojitab Sarni Pare Tanke Doshta Dokta Vahemare Purk Javan Pag Pare Tihare Tanke Tamsan Katasabtare जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल उनकट नहीं आए हैं रक्षा हुई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट उतरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहि न हरे हो ताके ताप तनक मोह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शास व सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फालते ताहि उभारा जैन नर नाम तिहारु कहा दारिद दोष्ट दोख तेरा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दैले उबारी

0: ओम
1: राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे फत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ सरियस पान कृपा तुमरी कारहु मैं न कहे ओ सब तोहे बखाने ओ दोहरा

ओंकार राम कली महला तीजानंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से ती मन वजियां बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बने आईया।

हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण, अंगीकारो करे तेरा अंकार्ज सब सुवारणा। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो बिसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मनाए वसया जन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु विटहो जिस दियां ए वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी। संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजी अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो, जे को खावै जे को पुंचाए तिसका होए उधारो। एह वस्तु तजी नह जाई नित नित।

जम कंकर नेड़ न आया, सुख नानक शरणी पाया। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरै कृपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी। कारे स्नान ग्रह आए, आनंद मंगल गुण गास, आनंद मंगल सुख पाए। गुरपूरै कृपा धारी,

संत हो राम नाम निस तरिय उठत बैठत हर हर ध्याई आन देन सो कृत करिय रहाउ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड भागी पाए कोट जन्म के कल विख नासे हर चरणी चित लाए। औसत करहूं सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जंत सब पै पवित्रा सतगुर की सच साखी। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप पै सब पावन जन नानक सुख कर आया। विघ्न विनाशन सब

जाएंगे सत भाखै रविदास। ताते भाई गुरु अमरदास जी कहने कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। भाई ये गुरु का शब्द रतन रूपी गहना है जिदे उत्ते शुभ गुणा दे हीरे जड़े हुए हैं। शिव शकत आपे उपाय कै करता आपे हुकम भरताए। देखो जिहड़ा करता है यह दिली दीपक है। मैं अगे भी दस्या सी दिली दीपक वह हुंदा जिहड़ा दोई पासी लगे। जिवें दरवाजे की दहलीज ते तुसी दीवा बाल के रखते हो ना उहदी अंदर भी रोशनी है ते बाहर भी रोशनी। शिव शकत आप उपाए कै करता आपे हुकम वरताए। शिव कहंदे ने जीव नूं ते शक्ति कहंदे ने माया नूं। उस करते वाहिगुरु अकाल पुरख ने आप ही जीव ते माया दोवें चीजां पैदा कीतियां ते आप ही अपना हुक्म वरताउंदा है। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। आप ही अपना हुक्म वरताउंदा है आप ही इन्हां जीवां नूं वेखदा ते आप ही कईआं नूं सतसंगत विच जोड़ के गुरु दे राही बुझा दिंदा ते जिन्हां नूं समझ आ जांदी है। इसे ही बाणी च लिखिया वड भागी।

हिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्य सार न जाने। तत्य सार न जानी गुरु बाजू तत्य सार न जानी। हूं तत्ते तुम समझ गए ना, नचोड़ असलियत असल वस्तु चो ओदी सार ओदी सोझी ओदी खबर गुरु जी संगत विच आए बिना नहीं मिल। इसलिए नतीजा यह निकलिया तीह गुणी संसार भ्रम सुता। इनू तही नहीं कहना तीही, तत्ते नू तिस्यारी हाय नू ही बिहारी तीही, जिहदा मतलब है तीन माया के गुण हैं रजो गुण सतो गुण तमो गुण, ओदे विच ही संसार भ्रम गया है। तीही गुणी संसार भ्रम सुता, भ्रम दे ममे नू सियारी है भ्रम विच, भरम का शिकार हो गए ने लोग, ते माया नू सची समझ के एदे विच ही लटो पीन हो गए ने। बस सुतियां फिर रहन वेहाणी, हुण इत्थे रहन दा मतलब है रात।

रात सुत्या ही बीत गई। धंधे करदिया करदिया किसी भी सियाणिया ने कहा धंधा किसी ने साध्या, सब धंधे साधे। लोग समझ रहे असी काम कर रहे हैं, असी ये करना ही नहीं, वो धंधे सानू ही खत्म कर देंगे। हम सुत्या रहन बेहानी गुर कृपा ते से जन जागे। इथे जन दा नन्ना मुक्ता है, से जन बहुवचन, ओ गुरु दे सेवक दास प्रेमी गुरसिख जाग पे जिना हर मन वसया, जिना दे मन विच मन दे नन्ने नूं सहारी। मैं किसे ते ठोसता नहीं गल, पर कुछ लोगों नूं ए गल हाली पच नहीं रही, समझ नहीं आ रही कि तुसी सहारी हटा रहे हो। नहीं नहीं, मैं हटा नहीं गया, मैं तो सिर्फ वो अर्थ समझा रहा कि मन दे नन्ने नूं सहारी लगी ते मन विच जिन्हां हर मन वसया, जिन्हां दे मन विच परमेश्वर का नाम वस गया, बोलें अमृत बाणी, बस उन्हां दी रचना तो फिर देखो ना असीं की करते। जे कोई कीर्तन करन वाला होवे, कथा वाला होवे, कोई लैक्चर करन वाला होवे ते बाहर जाके लोगों नूं गालां कढ़दा होवे ते लोग की कहणगे, भाई साहब ये की कर रहे हो, हुणे तुसीं बाणी पढ़ के आए हो, तुसीं गालां कढ रहे हो। बस इन्नी गल है, जिन्हां दे अंदर फिर बाणी बस जाती है वह फिर बोलें अमृत बाणी। उन्हां दी बाणी सुन के लोगों के तपे हिरदे भी शांत हो जाते, उनका जीवन ही बदल जाता। कोई जीवन बदलने लिए बहुता टाइम नहीं लगता। मैं अज तक याद एक दफा रामगढ़ उत्थे लुधियाने कलगीधर सिंह ग्रंथी सिंह का बहुत वड्डा समागम बुलाया, तो ज्ञानी गुरचरण सिंह जी वैद रुड़की वाले नवें शहर के को उदो हैड प्रचारक श्रोमणी कमेटी, उन्होंने एक वचन किया, ग्रंथी सिंह तुहाडी पदवी बहुत उच्ची है, तुहाडे ते इस हजूरीए आ हजूरीए जिन्हों असीं परना कहने हजूरीए ये जिन्हों छू जाए ना उहदा भी जीवन बदल जाए, फिर है इसका लाभ। तो जे साडे कोल बह के किसी नूं फेक आवे फिर कहदा जी। महाराज कह रहे ने जिन्हां ते गुरु की कृपा हो जाती है, गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसया बोलें अमृत बाणी। वो बोलते हैं, हुण देखो इतने अमृत के तत्ते नूं औंकड़ भी आएगा, अमृत का तत्ता मुक्ता भी है, पर सानू क्योंकि पता नहीं ये बाणी जिहड़ा है स्त्री लिंग है, इस नाल इहदे अमृत तत्ते नूं औंकड़ नहीं लगेगा। पर जिथे सुर नाल मुन जन अमृत खोज दे उत्थे तत्ते नूं औंकड़ लगेगा। ये थोड़ियां थोड़ियां बरीकियां ने, पर यकदम फूक मारिया कोई नहीं समझ सकता, मैनू भी नहीं समझ आई। जदों पहली बारी तेजा सिंह समुद्री हाल विच केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा जिसके प्रधान साहब हुक्म सिंह सन ते उहदे सकत्तर ज्ञानी गुरदित सिंह जी सन, ते उदों साहब गुरचरण सिंह टौड़ा दे उद्यम नाल ज्ञानी मेवा सिंह जी नेत्रहीन हुंदे, उन्हां ने वो पहली बारी उद्यम किया। उदों समझ आई कि गुरबाणी दीआं लगां मात्रां दा कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो गल की पातशाह कहिंदे कह नानक सो तत् पाए, नानक जी फरमांदे ने उस असलीयत नूं पा लेगा जिसनों अन दिन हर लिव लागे। जिसनों अन दिन, हुण अन दिन का मतलब है हर रोज हर वेले, जिन्हों आप कंटीन्यूसली कहने लगातार, जिदी लिव लग जाएगी जागत रहन बेहानी। उन्हां दी जिंदगी रूपी रात जागदियां बीते, कदे बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ो।

जब गुरु जी खूह ते पहुंचे तां की वेख्या, खूह दा पानी सुक गया, शहंशाह वापस मुड़ाए ते मीर ने पहाड़ी वाली छपड़ी वाल तोर दिते, उत्थे भी पानी खत्म सी। गुरु जी वापस मुड़े, मीर ने नीज लैके तकिया, गग सतों एक गिट उच्ची आ रही सी। मीर घबरा गया, नूरानी चेहरे दी ताब ने चली गई। एने नू सारे शहर विच दुहाई मच गई, सब टोबे खूह चरने तला पानी तो खाली पै सन। अपनी गर्मी ने लोगों कुरलाद पदता, लोग

पठान ने गुरु जी नु कमरे विच बंद करके जिंदा रख दिता। पठानी नु खुश होके कहन लगा कि अज खुदा ने बहुत चंगा शिकार दिता है, कल नु मंडी विच वेच के मालो माल हो जावांगे। पठानी ने तख्ते दी विरल विच दी कमरे विच चान हुंदा वेख्या। सतगुरु ने मासूम चेहरे वल वेख के कालजे दा रुग भरिया गया। एदे घर विच कोई बच्चा नहीं सी, मां दी ममता जाग उठी। गल विच पल्ला पाके पति पठान दे अगे सतगुरु नू ना वेखण लई पठानी इउं कह

बिन दर्शन संत प्यारे जियो हो खोली जियो खोल समाई गुरु दर्शन संत प्यारे।

मुट्ठी हो गया सुख के, पिंजर हो गए शायद मिल जाए। जे अखा ही खा जाएगा तो देखांगा कि मैं दर्शन कि मैं हों। संत महाराज राड़ा साहब वाले पढ़ते होंगे, आस वेखा आस की गल मैं करनी चाहता सा। आस प्यास की दिन रात चितव हो अन्न दिन नीत खोल कपट गुरमेलिया नानक हर संग। आस बड़ी वड्डी चीज है, आस मलाप करा दिंदी, बेआसा बंदा कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। आसावंत होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए मनुख नु। आस होवे ते मलाप भी जरूर होता।

लोचन परी ले उसासा। अखा में चतुरु ने कामनी अपने पति नु याद करना, पंथ निहार दी रा निहार दी रा तक दी रा तक दी। जीव रूप स्त्री पति परमेश्वर साडा सारयां दा, असीं सारे ही जीव रूपी स्त्रियां। पंथ निहारे काम नी लोचन भरी ले उसासा, और न पुजै पग न खिचै हर दर्शन की।

0: परनासी दयाल स्वरूप सदा अंग संगे अपंग परम सतगुरानी साजीन वाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा सतसंग जी रसना पुत्र करो बुलंद आवाज विच आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने मेहर की थी है सानू सतसंगत करन दा मिलके बैठन दा सुभाग मिलिया। बहुत दूर तक नजर पैंदी बहुत संगत गुरु साहब जी दे चरणां विच हाजरी करन वाली भावें बच्चियां दे इम्तिहान भी चल रहे ने कईयां दे बच्चियां ने सवेरे इम्तिहानां विच जाना है बच्चे पढ़न वाले भी जिन्हां दा इन्ना प्रेम है कि सवेरे इम्तिहान है सवेरे परचा भी है पर फिर भी अज संगत विच आए हुए वो भी जिन्हां ने एक दो बजे पहुंचना है सवेरे स्कूल भी जाना है उन्हां दा मन इन्ना जुड़िया है वी जो मर्जी होवे असीं संगरांद दे दिन ते जरूर सतगुरु जी दे चरणां विच हाजरी करदे क्योंकि संगत विच बैटरी चार्ज हो जांदी है। बहुत सारे गुरमुख इत्थे विच आए हुंदे ने रंगीआं रूहां आईआं हुंदीआं ने नितनेमी आए हुंदे ने भजन पाठ करन वाले आए हुंदे ने उन्हां दी नज़र साडे च लंगर च बैठिआं तुरदिआं गड्डिआं ट्राली इदां संगत च बैठिआं कोई पता नहीं केड़ी रूह दे नाल तुहाडी नज़र मिले ते सतगुरु दी बख्शिश ऐसी होवे भी जीवन बदल जाए। संगत विच बड़ी वड्डी ताकत है इत्थे एक तो एक रंगी रूह लभेगी। मैं बेनती हमेशा कीती है देखो वो भैन भी इत्थे बैठी है संगत विच जिहड़ी एक चौंकड़े एक खंड पाठ करदी है ते महीने च चार कर दिंदी साल विच 51 ते दो सालां विच 101 चार तो भी ज्यादा एवरेज बनती है महीने च चार ते जे चार खंड पाठ एक चौंकड़े एक खंड पाठ करना है भोग पा के उठना है ते एक दिन पहला खाना बंद करना पैंदा। हफ्ते विच दिन किन्ने हुंदे ने सत्तां चों तीन दिन ते बाणी पढ़दे लंघ गए एक दिन उदां ही रोटी नहीं खानी चार हो गए मगर रह गए दिन तीन ते महीने विच 12 दिन नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल लाइफ बाकी का सारा समा सतगुरु दे लेके असीं ते इक सुखमणी साहब पढ़ के कहिंदे आं कि मैं भगत बन गया बड़ा वड्डा मैं नितनेमी हो गया मैं जपी तपी हां मैं 5 मिंट 10 मिंट सिमरन करना वेखो वो भी भैणा ने चौंकड़ा मार के बहना ते भोग पा के उठ असीं साल बाद कितें खंड पाठ कराने वह भी मसा ही जे कराना तो अपनी टूटी वाली पग ही नहीं ठीक आउंदी साडी उन्हों ढा ढा के बनी जाने भी आने ने रिश्तेदार कहे कि लिबड़िया फिरता केड़ा पाठिया जल पानी पुछता कितों तक भी वेखन मिलता कह 1500 मोख है जी 1500 रुपया लेना है पाठिया कह 200 होर ले लो ले भी आयो छड भी आप ही आयो सतों नहीं है हुंदा फिर बख्शिश खुशी नहीं एक चौंकड़े बहन जोगे सुन लिया करो प्यारे हो करना ते चलो वेखो ये वाहगुरु जी जी ते मेहर होनी ओदे ते पिछले जन्मां दीआं कमाईआं खेडां हुंदीआं एक जन्म दी खेड भी हुंदी तन हन ओह बीबियां बच्चियां ते असर होवे किवें ना जदों मावां इदां दीआं होण हो सकदा तुहाडे च बैठा कोई वीर भरा जां कोई साडी भैण मां इस गल ते शंका कर लवे कि बाबा जी आप कहिंदे हो भी माता पिता जुड़े हुए होण ते बच्चे जुड़े हुंदे ने मैं ते जुड़ी हां मेरा मुंडा ते जुड़िया नहीं मैं खुद अमृतधारी हां सिंह सजिया होया मेरा बच्चा ते नहीं जुड़िया एक ही गल एक कोई कुदरती खेड ऐसी वरत जांदी है पर जे तू मनो जुड़े हां पहली गल अंदरों जुड़े हां दिलहों मुहब्बत है ना जे दिलहों मुहब्बत जिन सही सिखिया जे ते अंदरों जुड़े आए तो फिर ये अटल सच्चाई है कि सतगुरु मेहर करन तेरे ज्यौंदियां ज्यौंदियां तेरा पुत्र तेरे वर्गा बन जाएगा। तेरिया अरदासा तेरे नितनेम तेरी मेहनत का सदका अगर नाम ही तेरे हुंदिया जुड़िया जिदन तू चलिया गया फिर जो चलिया जाए ना कोई फिर बहुत ही याद आऊंगा फिर गल्ला बहुत चेते वो फिर आ जाएगी सिक्खी घर जे तेरी रीज है मेरे घर च सिक्खी आवे ते आएगी जरूर फिर बेफिक्र हो जा अरदास करदा जा। मैं अज एक सिंह नूं मिलिया सा वैसे तो मैं संगरांद नूं नहीं मिलदा संगत नूं टाइम थोड़ा हुंदा है अज कुदरती मैं अपनी मस्ती च बैठा रहा उधर पर संगत मैनू सिंह कहिंदे बैठे ही उह ते तुसीं मिल लो जिहड़े आए ने बाहर लैणां लगियां गेड़ा कढ़ा देने तुसीं इत्थे वी ते बैठे ही हो बैठे रहो इदां ही लंघ जाणगे सारे। मैं कहा चलो लंघा दिओ चलो लंघ गए मिलने वाले आए फिर तो चलो मेरा ख्याल है चार पांच हजार मिल गया होना है बैठिया बैठिया ही जो एक बिच मिलिया मैनू कहिंदा बाबा जी पिछी बैठा सिंह साढ़े एक सती माता नू मनदे आ पिछले कई अरसे तो साडिया पीढ़िया च मनदे आ रहे ने तो मैं की करा दसो असी हुण मैं पिछले दो तीन सालों तो जुड़ गया अमृत धारी हो गया तो मैं छड़ दिता सारा कुछ तो मैं हुण मुश्किलों विच भी हाँ मेरी लत टुट गई पिछे एक बारी जां कुछ चलो ये तो कुदरती खेड है इदां जे सतगुरु नाल जुड़िया तो सतगुरु तो वड्डा कोई नहीं पर वेखो कहिंदा मैनू मुश्किलों भी पेश आ रही ने रिश्तेदार भी परिवार भी मुश्किल खड़ी कर रहे ने भी खरे तू तो इदां हो गया पर कहिंदा मेरा दृढ़ विश्वास है तो मैं अटल हाँ अपने नियमों उत्ते असूलों उत्ते और सिक्खी दे जो असूल दसे गए ने मैं सुनता रहना तो मैं आख्या मैं नहीं जाना भावें जो मर्जी हो जाए मैं आख्या सिंगा जिनी मर्जी विपता झलनी पै जाए तू अपने बच्चों सिक्खी का बीज बीज दई दीवा दूवा छड़ दे बस जिमें मर्जी करी तेनू औख झलनी पै जे झल लै पर जेड़ी तेरी पीढ़िया च मर्यादा चली आ रही है ये जे तू बदल लगा तो बदल के जाई भावें जिन्या मर्जी मुसीबत चलनी तेरे परिवार विच सिक्खी आनी चाहिए अर्ज है अगर मान चाहती है मेरा परिवार सिंह सजे तो जरूर सजेगा अगर चाहता है ना कोई परिवार का मैंबर मैं बेनती संगत विच बड़ी बारी स्टेज से की है मैं राड़ा साहब गया साढ़े नेड़े गुरुद्वारा चौंटा साहब महापुरखा का साल बाद आते साल बाद महीने बाद संगरान का दवान होंदा तो मैनू स्कूल विचों कदे झिड़का नहीं सी पैंदियां मेरे टीचर भी संगत विच बैठे ने जिहड़े मैनू पढ़ाउंदे सी कि मैं ठीक था तो मैनू एक महीने बाद जरूर झिड़का खानियां पैंदियां सी कि संगरान वाले दिन मैं भज जांदा सी चोरी वो कुदरती गल सी कि उत्थे दवान लगदा सी संगरान दा चोरी भी मैं जांदा सी भी जिवें मर्जी होना मैं जाना मैं कहना पता नहीं है उहदा ही फल है जिहड़ी संगत संगरान ते आ जांदी क्योंकि बीजिया ना महाराज ने पता नहीं कुदरती खेड ऐसी बनाई जाना झिड़का खानी है परिवार सारा ही खराबी अमृत का तो पता ही नहीं किसी ने अमृत छक के आए साडे दादी जी उन्होंने मजाक करया करे सारा टब्बर लै आ वेख ए बीबी दया पाई फिर श्री साहब ने इदां दा शब्द बोलिया समा लंघिया मैं गया अमृत छकन पर मेरे मन में डर सी मैं क्या कि लवा ही ना दे बड़े माड़े भाग होंगे ने जे इदा के परिवार च गुरमुख कोई पैदा हो जाए बच्चे इदा के जेडे जुड़ना चाहते ने पर माता पिता नहीं जुड़न देंगे कुदरती है पर वो असल विच माता पिता के भले वास्ते जिवें हरनाथ के घर परमेश्वर ने प्रहलाद पैदा कर दिता उहदा भला करना जे नास्तक ने ते आस्तक बच्चा घर विच आ जाए तो मतलब यह परिवार का भला होना होए घरवाली मनमुख है बंदा अगों गुरमुख मिल जाए तो मनमुख का भला करना एक ना एक दिन उन्हें अपने पिछे ला लिया जे बंदा विगड़िया होया बीबी गुरमुख मिल जाए तो बंदे के चंगे कर्म ने उन्हें यह बीबी मिली है उन्हें हौली हौली हौली हौली अपने वर्गा बना ही लै हाँ वह भैन ना हो नकली बीबिया बाबा जी बड़ा नाम जपते सा पेके घर च हूँ जदों के गए हैं सहुरे घर च पींदे भी ने मुरगे भी बनते हैं तो असी पूछी तो भैन जी तुम फिर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਵੇ, ਤਰੀ ਤਰੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਤੇ ਹੈ ਜਮਾਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਨੇ ਕੋ ਬਦਲ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ, ਵੱਗ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਗ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, 1.25 ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਸਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗਾ, 5 ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੜਦਾ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੱਕਾ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਲਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛਕ ਆਇਆ, ਛਕਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਕਰਨ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿਆ, ਕਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲਣੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋੜ ਆਉਣੀਆਂ, ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਬੋਤਲ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਟੀਚੀ ਗਾਦੀ ਚ ਬਦਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜੀ ਮੇਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਰੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ
1: ਅਕਾਲ,
0: ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੋ ਘਰ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਘਰ 'ਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੜੇ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਏਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਪੂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਲੋਕ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੇ ਪਲਾਏ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਨ ਲੈਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਲੈਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਲੈਕ ਮਲੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਲੇ ਪਲਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। जे तेरे ज्योंदिया ना आई तेरे मरण तो बाद आ जाएगी जात जो आएगी ना मां दी फिर पुत फिर गल्ला याद आने मावा अरदासां कर दिया रहन हमेशा मावा पुत्रां दी हमेशा सुख चाहुंदिया मां वर्गा कणछावां बूटा मैनू नजर ना आए मैं मां दी एक गल करना मैं कलकत्ते कीती सी इको वारी हुण तक मैं किसे लखारी दी लिखत मैं ट्रिब्यून अखबार विच पढ़ी सी उन्हें अपनी हड बीती लिखी प्रोफेसर मोहन सिंह मोहन सिंह ठीक है सर जी मोहन सिंह उन्हें ये लाइना लिखिया सन

रब ने स्वर्ग बनाए, रब ने स्वर्ग बनाए, जिसको लेके साथ उधारी, जिसको लेके

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
3: Hai Roo Mahalla Panjwa Naam Lait Kish Bigan Na Lagay Naam Sunat Jam Dur Ho Pagay Naam Lait Sab Dukha Naas Naam Japat Har Charan Nivas निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ

कृपा तार, सास सास हर देहो चितार, तैरु महला पंजवा, आपे सास ते आपे बेद, आपे कट कट जाने भेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वथ, करण कारण पूर्ण समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आराध्य।

मुकत पुगत जुगत वस जाकै ऊणा नाही किस जन ताकै कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न नानक दास से जन धन पैरों महला पंजवां भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद तै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वसया मन आई राम राम संत सदा सहाई।

राखै हाथ, निमक न छोड़ै सद ही साथ। हर सा प्रीतम अवर न कोई, सार संभाले साचा सोई। मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन। तिसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर। नानक कै मन एहो परखारथ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। पैरों महला पंजवां, पै कौ भौ पढ़िया सिमरत हर नाम। सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की, दास के होए पूर्ण काम। रहाउ हर के लोक सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूर्ण धाम। जन का दर्श बांछे दिन राती, होए पनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अवमान। ऐसे संत पीतै वडभागी, नानक तिनकै सद कुरबान। पैरु महला पंजवां, पंच मजमी जो पंचन राखै। मिथ्या रसना नित उठ भाखै, चक्कर बनाए करै पाखंड। चुर चुर पचै जैसे त्रैरंड, हर के नाम बिना सब झूठ। बिन गुर पूरे मुक्त ना पाई है।

आए ना सोच हर मन अंतर मैला बाहर नित धोवे साची दरगह अपनी पत खोवे माया कारण।

हर नाम भगत सिंह लागा रंग, कहो नानक तिस जन नहीं भंग। पैरो महला पंजवां, निंदक को फिटके संसार, निंदक का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार, दास अपने को राखनहार, निंदक मुआ निंदक कै नाल, पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ। निंदक का कहया कोई ना माने, निंदक झूठ बोल पछताने, हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे, निंदक को दई छोड़े नाही, हर का दास किस बुरा ना मांगे, निंदक को लागे दुख सांगे।

हर जन करै सो निःचल होए, हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत बीचार, पैरों महला पंजवां, दोए कर जोर करो अरदास, जियो पिंड धन तिस की रास, सोई मेरा स्वामी करनै हार, कोट बार जाई बलिहार, साधु धूर पनीत करी, मन के विकार मिटह प्रभ सिंह।

सगल मनोरथ पूरन हार, जी प्राण भगतन आधार, कट कट अंतर सगल परगास, जप जप जीव है भगत गुण।

कमल गुन गुनी अनक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप अनक गुणत तुनत ललत अनक तार मुनि अनक नाद अनक बाज निमख निमख अनक स्वाद अनक दोख अनक रोग मिट है जस सुनी नानक सेव अपार देव तट है खट है बर्त पूजा गमन पवन जातर करन सगल फल पुनी भैरों अष्टपदियां महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर दी चारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काटे हो मारा नानक हो मैं रोग बुरे जह देखा तह का बेदन आपे बख्शे शब्द तुरे रहाउ आपे परखे परखन हारे बहुर सुलाक ना हुई जिनको नदर पई गुर मेले प्रभ पाणा सच सोई पौन पानी बै संतर रोगी रोगी तरत सपोगी मात पिता माया देह से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरदरा रोगी सगल संसारा हर पद चीन भये से मुक्ते गुर का शब्द विचारा रोगी सात समुंद सनदियां खंड पताल से रोग परे हर के लोक से साच सुहेले सर्दी थाई नदर करे रोगी खट दर्शन भेख तारी नाना हठी अनेका देवक तेव करह कह बपरी नह बूझह एक एका मिठरा सखाए सो रोग परिजै कंद मूल सुख नाही नाम विसार चलह अन मार्ग अंतकाल पछताही तीर्थ पर मैं रोग ना छूटस पड़या बाद विवाद भया दुबदा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज भया गुरमुख साचा शब्द सलाह है मन साचा तिस रोग गया नानक हर जन अन बिन निर्मल जिनको कर्म निशान पया पैरू महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिन करता एक चलते पाया अनहद बाणी शब्द सुनाया मनमुख फूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान हो कबहू ना छोड़ो हर का नाम रहाओ पिता प्रहलाद पढ़न पठाया लै पाटी पांडे कह आया नाम बिना नह पढ़ो अचार मेरी पटिया लिख दे हो गोविंद मरार पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए परवित ना पढ़ो रही समझाए निरपो दाता हर जियो मेरे नाल जे हर छोड़ो

राज चलाया, हर ना बूझे तिन आप पलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझे काल नेड़े आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया बार दिया ताला, निरपव बालक मूल ना डरई, मेरे अंतर गुर गोपाला, कीता हुए श्री की करे अनहोंदा ना उतराया, जो तुर लिखिया सो आए पहुता, जन स्यो वाद रचाया, पिता प्रहलाद स्यो गुरजे उठाई, कहां तुम्हारा जगदी सुग साई, जग जीवन दाता अंत सखाई, जह देखा तरहया समाई, थम अपाड़ हर आप दिखाया, अहंकारी दैत मार पचाया, भगता मन आनंद बजी वधाई, अपने सेवक कौ दे वडियाई, जम्मन मरना मोह उपाया, आवन जाना करता लिख पाया, प्रहलाद कै कारज हर आप दिखाया, भगता का बोलिया गै आया, देव कुली लक्ष्मी कौ करह जयकार, माता नरसिंह का रूप निवार, लक्ष्मी पहु करे ना साके जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुर नाम निधान बिरडाया, राज माल झूठी सब माया, लोभी नर रहे लपटाए, हर के नाम बिन दरगाह मिले सजाए, कह नानक सब को करे कराया, से प्रवान जिन्नी हर स्यों चित लाया, भगता का अंगीकार करता आया, करता है अपना रूप दिखाया, पैरू महला तीजा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हम तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वसिया, मनसा मन है सुमाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना कहो जम जोहे ना साके, रत्ती अंच दुख ना लाई, आप तरह सगले कुल तार है, जो तेरी सरनाई, भगता की पैज रख है तू आपी, यह तेरी वडियाई, जन्म जन्म के किल विख दुख काट है, दुबदा रती ना राई, हम मूड मुगद किस बूझ नाही, तू आपे देह बुझाई, जो तुद पावे सोई करसी, अवर न करना जाई, जगत अपाए तुद तंदै।

तिन नाम पाया जिस पयो कृपाल, साध संगत में लखे गोपाल, आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्ते तत मलाया, पैरु महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके त्रमसाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो तनी गो

पराना राम राजा नौ निध मेरे संपहित कलत धन तेरे रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का पया।

परम गुर एही कहो रे मुल्ला बांग निवाज एक मसीत दसै दरवाज रहाउ मित मिल तामस परम कदूरी भाखले पंचै हुए सबूरी हिंदू तुर्क का साहिब एक कह करे मुल्ला कह करे सेख कह कबीर हो भया दीवाना मुस मुस मनुआ सहज समाना गंगा कै संग सलता बिगड़ी सो सलता गंगा हुए निबरी बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई साच भयो अन कत

निबरियो संतन संग कबीरा बिगरियो सो कबीर रामे हुए निबरियो माते तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खलौना जाना जो हो बौरा तो राम तोरा लोग मर्म कह जाने मोरा रहाउ तोरो ना पाती पूजो ना देवा राम भगत बिन नेपल सेवा सतगुर पूजो सदा सदा मनाऊ ऐसी सेव।

जो निर्तन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर तन दोनों

भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाहो रहाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बानी, भज ले रे मन सारिंग पानी। अब ना भजस भजस कब पाई, आवे अंत ना भजया जाई।

चंद रावी ऊपर गहरा क्या चंद पश्चिम द्वार सूरज तपे मेर दंड सिर ऊपर बसे पश्चिम द्वारे

0: बस गुरु अमरदास जी ने ऐसी सेवा की थी ना, करतार नू वाहिगुरु नू वास कर लिया, कर लो सेवा जे वाहिगुरु नू। गुरु अमरदास उन्होंने वास करतार नू कर लिया वाहिगुरु नू। ते वाहिगुरु कौन सी उस समय? गुरु अंगद देव गुरु नानक दा रूप साफ प्रगट होए सी, जस करके सेवा करके ऐसी सेवा की थी कि रब नू वास कर लिया गुरु अमरदास जी ने।
1: वाओ वाओ कर त्या
0: चौबी घंटे नाले गागर ढोनी नाले सतनाम दा जाप। मैं तो कल भी बेनती की थी सी ते कोई मेरा वीर बुजुर्ग चाचा ताया गुस्सा न करे हो, जहां पानी ते लंगर पानी ते लंगर दे छकया करो, पर इत्थे लंगर विच कुर्सियां ते बैठ के पुठियां सीधियां गल्लां ना करया करो। इत्थे सतगुरु दा दरबार है, कुछ भय रखिया करो मेरे बुजुर्गो। ये लंगर तो सब दा सांझ है, जो मर्जी छको तुट भंडारे ने, पर मैं कुछ सुनदा है उसे बचन जेड़े होने है। मेरे को टेप नहीं तो करे लईए अज के आखो सतनाम। ए बचन सानू थोड़ा जा संकोच करना चाहिए गुरु घर भय प्रतीत रखनी चाहिए गुरसिख प्यारियो कि असी बैठे किथे है गलबात इथे की करिए। गुरु दे लेखे लगन वाले बचन करो, ओ ही बचन इथे शुरू करो जेड़ा कुछ सुधार होवे, साडा सुन वालिया का भी सुधार होवे। पर असी इन्हों गलों तो अवेसले होए हुए हैं, कमेटी वाले तो थानू कह नहीं सकते क्योंकि वोटा तीए चौथे साल पैनी है अज के आखो सतनाम। मैनू पता है मैं बिचे रहने, मैं मैंबर है तो छोटी जी कमेटी है, मैं तो एच जी पी सी का मैंबर अमृतसर का, मैनू पता है भी खुशामद करनी पैंदी है वोटा की, कोई तो कह नहीं सकते। पर साडा चौकीदारा का फर्ज है, चौकीदार हाक मार के जाता होंगे जाग दे रहा। यह तुहाडे चरणा विच साडियां बेनतियां ने बजुर्गों के, कोई इहनू उपदेश नहीं समझना। चौकीदार जदो हाक मारदा उपदेश नहीं हुंदा, ओ बेनती हुंदी है, आवाज हुंदी है भाई भोजन छक दे, कोई ऐसा वचन करो ताकि वो भोजन अमृत रूप हो जावे, उस भोजन विच रस पै जावे। गुरसिख प्यारियो ऐसे वचन ना करो कि वो भोजन भी कौड़ा हो जावे, ओदा रस की बनना है अंदर जाके जहर बने। गुरसिख प्यारियो ऐसे वचन गुरु नानक पातशाह दी सेवा, गुरु अंगद देव जी ने गुरु अंगद देव जी दी सेवा गुरु अमरदास जी ने ऐसी कीती, ऐसे बचन वाह वाह वाह चौबी घंटे नाले गागर ढोनी नाले सतनाम श्री वाजी, यही कहना वाह है मेरे गुरु अंगद देव तो, आश्चर्य तेरी बड़ियाई, तू रब रूप है। ऐसे ही बचन मुंह तो करदे करदे सेवा करदे सी।
1: श्री गुरु रामदास जय जय जग मह।
0: फिर गुरु अमरदास जी दी सेवा तुसी कीती गुरु रामदास महाराज, 6 साल जिस घर दे जवाई गुरु रामदास गुरु अमरदास दे घर दे ब्याहे होए सी, छोटी पुत्री नू जवाई सी, जवाई जाके टोकरा टोवे भांडे मांजे, देखो की अवस्था, आपां गृहस्थी हां सारे। जिस घर दे जवाई 6 साल टोकरी टोई, 6 साल विच कट टुटिया सी बौली साहब दा, 6 साल टोकरी ढोई गए निरंतर, बस जिन्ना टोकरा भर देना कदे जवाब ही नहीं देना, चक के सिटिया नंगे पैर पाटे कपड़े। लाहौर तो आई संगत इन्हां दा कोड़मा चाचे ताए, जद उन्होंने देखिया भाई जेठा जी नूं कहिंदे साडा सोढ़ियां दा मुंडा इत्थे विआह होया, ते उन्हां दे घर मिट्टी ढोंदा तां साडी कुल्लू कलंक ला दे। की कहणगे लोक, तुहाडा मुंडा मिट्टी ढोंदा जिहदे विआह होए है। देखो कैसी ताने मारे मेहे मारे, पर सब कहता हो तुहानू मिट्टी दिखदी है, इहदे नाल जुड़ के देखो तुहानू पता लगे चीज की ए तूड़ी है, ते जे मिले तो मस्तक लाईए, जे किते विजे होवे पूर्व लिखिया तां धूड़ तिन्हां दी पाई। ओ गुरु रामदास महाराज जी ने काल कमाई कीती,
1: तै हर परम पद पाए,
0: उस काल कमाई दी कृपा होई, फिर जय जयकार होगी जुगा अंदर गुरु रामदास जी तेरी, ते परम पद पा लिया अविनाशी पद, केवल मुक्ति वाहिगुरु दे नाल मिलाप, ये सच्चा तख्त तुहानू प्राप्त हो गया।
1: नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा,
0: इन्हां पदवियां नू जिथे हुण तुसी बैठे हो, बड़े बड़े जुगां विच नारद जी ब्रह्मा जी दे सपुत्र ध्रुव जी गुरमुख प्यारे, सुदामा भगत द्वापर विच कृष्ण जी दा एडे

पुरख निरपाव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है पी सच नानक होसी पी सच अमृत वेला सच ना वड़ियाई विचार कर्मी आवे कपड़ा

0: पथ पुनीता बाहर चलया कर्ण पथ मन बैरागी होए अति नारद मुनि अब चल राज करो नीता
1: हार चल गुरमुख जल गीता

वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु राम प्यारे सदा जागें नाम सिमरें

अज हूँ कच बिगड़े हो नहीं जो प्रभ गुण गावे जो प्रभ गुण गावे अज समझ कच बिगड़े नाहन अज समझ अज हूँ समझ अज हूँ समझ अज हूँ समझ

0: जो मिश्रा गोविंद नाम संभाले
1: मन प्यारा तू सदा सच संभाले एक दम तूने देखा चला नहीं तेरे नाले भूले ना किया जिस अंत पछताइया सतगुर का उपदेश सुन तू होया तेरे नाले कह नानक मन प्यारे सदा हथ संभाले
0: अनकाए रातिया पाठ दोहे राम अवकार नकाम अवकार नकाम मिल पा संगत पद केवल नाम।

बेली होए तेरा सदा पत्थो आवे गुण गोपाल ना जपे रसना फिर कदो से आवे आगे को किसी

दर्शन प्रयासी दिन सरात चितवन दिन नीत कोल कपट गुरमिलिया नानक हर संगमीत दर्शन देख जीव गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा यह बिनंती।

सब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखर बिखखाय माया मोह परम है पुले सुतदार आशां प्रीत लगाई उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रतती गुरु रामदास

दर्शनो परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय हो वै सिफत संबंधी नूर अरसों पुरुषों चकी

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथ नाद विनोद कूड़े आनंद शर्म खंड की वाणी रूप जिस काटत कड़ी है बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कह पिछे पछताए जिस कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध जिस कड़ी है सुरस दंकी शुद्ध कर्म खंड की वाणी।

जिन कह राम वसै मन माही, तिथै भगत वसै कह लोह करे आनंद सचै मन सोई, सचखंड वसै निरंकारु कर कर वेखै नजर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै दंत न अंत, तिथै लो लो आकार जिव जो हुकुम देवै।

अंत बताओ पांडा पाओ अमृत तत टाल कड़िया सब सची टकसाल जिनको नदर कर्म दिन कार नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता दर्त महत दिवस रात दाई दाया खिल सगल जागत चंगियाइया बुरियाइया वाचा धर्म दूर

देव बेब न जानी जय बेदार देव रूप रंग न जात बात सुजानी कह जय बहुतात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चकर बकर बिर जदर जाको मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखय जग जापे जय जाप आद देवनाद मूर्त थाप्य सब जय थाप परम रूप बनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो सुयम पव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुख देश धर्म धाम सु परम रहत अपूतल कपेश अंग नाग न रंग जा कै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी कानो सत एक पुरुख बतूत गर्भ गंजन सर भंजन आदि रूप सूत अंगहीन अपंग नातम एक पुरुख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जाने जय रूप रंग अर रेख परम वेद प्राण जाक है अनेत भाखत नैत कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार छंद दव प्रसाद गुणगण उदार महिमा पार आसन अपंग उपमान अंग अनुपव प्रकाश दिशन अनाश आजन बाह शाहन शाह राजन राज पानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्राण इंद्र बालन बाल रंकन रंक कालन काल अनपूत अंग अपंग गातमित पार गुणगण उदार मुनगण प्रणाम निरपैने काम अत दुत प्रचंड मितगत अखंड अलिश कर्म अदृश धर्म सर्वा प्रणाढ़ आन डंड बढ़ चाचरी छंद तव प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग निरनामे कामे पजंग प्रयाद छंद चतर जकर करता चतर जकर हरता चतर जकर दाने चतर जकर जाने चतर जकर वरती चतर जकर भरती चतर जकर पाले चतर जकर काले चतर जकर पासे चतर जकर वासे चतर जकर माने आए चतर जकर दाने आए चाचरी शंभ न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय जन्मंग जाय न चित्र न मित्र परे पवित्र प्रतिशा दिशा दृश कृषय भगवती छंद दव प्रसाद कथते क्या सिज देस क्या पिज बिश क्या गंज करम क्या पंज परम क्या पिज लोक क्या दित सो कह क्या भूत वर्ण किवे भूत करण के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुजा है क्या अशोक वर्ण है कि सर्वा भरण है कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्राह्मण स्वरूप है कि अनुपानूप है कि आदो देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि कह दीन है के रोजी रजा कर ही मरहा गए के बाक बेअबैंक गय भुल गय बहें के आप भुल गुनाहें के शाह नशाएं के कारण गुनंदें के रोजी दहंदें के राज करीमें के कर्मं करीमें के सर्वंग कलियें के सर्वंग दलियें के सर्वत्र मानें के सर्वत्र दानें के सर्वत्र गावनें के सर्वत्र पावनें के सर्वत्र बेसा है देश है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लेना है के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने हैं सदैव प्रधान आए के सर्वत्र जापे आए के सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमें के परमंग फहीमें के आकलो अलामें के साहब कलामें के उष्णो बजुए तमाम रजू है हमेशल सलामें सलीक समदामें गनी वल सकस्ता गरीब वल बरासता बुलंद लम गाना है जमीन ओल जमाना है तमीज ओल तमाम है रुजू ओल नदाना है हरी फल जी मर जाए के जकीना है अनेक ओल तरंग है भेद है पंग है अजी जलो निवाज है गनी मुलख राज है निरोगत स्वरूप है त्रिमुगत बभूत है प्रमुगत प्रवाह है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाध अनूप है अंगाध रूप है नाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकाम है
ਸਰਵਰਗੰ ਦਰਬਾਦੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰ ਸਰਭਾਗੇ ਸੁਸਰਵਾਨ ਰਾਗੇ ਦਰਭੁ ਸਰੂਪ ਸਜੈ ਸੂਤੈ ਗਣਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੋਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਦਾ ਹੈ ਬੇਭਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੋਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੋਗਤ ਸਦਾ ਹੈ ਬੇਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਨੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੋਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਪੰਗ ਹੈ ਨੰਗ ਹੈ ਪੇਖ ਲੇਖ ਹੈ ਪਰਮ ਕਰਮ ਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਭੈ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਦੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਦੰਦ ਹੈ ਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਬਿਰਗਤ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਜੰਤ ਹੈ ਸੁਨੰਤ ਹੈ ਅਲਖ ਦਿਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਟਹਾਇ ਗਾਹ ਸੰਭ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਨੀਲਾ ਨਾਦ ਹੈ ਨਿਤ ਸੁਨਿਤ ਜਾਤ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਦਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵੰ ਹੰਤਾ ਸਰਵੰ ਗੰਤਾ ਸਰਵੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਵੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਵੰ ਹਰਤਾ ਸਰਵੰ ਕਰਤਾ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰ ਕਰਮੰ ਸਰਵੰ ਧਰਮੰ ਸਰਵੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਵੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਿਰਕਨਾਸ਼ੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਪੰਗੰ ਬਭੂਤੇ ਪਰਮਾਥੰ ਪਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਵ ਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਬਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤਿਰਭੰਗੀ ਤਿਰਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਵੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ੍ਰੀ ਗੈ ਮਿਤੋ ਮਿ ਗੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਵਾਹੇ ਅਜਹਿ ਅਜਾਹੇ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਜਾ ਹਰਜੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਾਸਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਰਾਗ ਹੈ ਕੇ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਰੀਮਲ ਖਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀ ਫੁੱਲ ਸਿਕਨ ਹੈ ਰਾਸ ਲਿਫ ਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇ ਕਰਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਤੁਲ ਜਵਾਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਏ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਹਿਸ ਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ ਮੇ ਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰੰ ਪਰਮੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੁਲ ਅਧੀਸ ਹੈ ਅਧੀਸ ਲੇਖ ਹੈ ਮੇ ਸੁਲ ਪੇਖ ਹੈ ਜਮੀਨ ਉਲ ਜਮਾ ਹੈ ਮੀ ਕੁਲ ਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾ ਲੈ ਗਜਰੋ ਜਮਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੋ ਸਵਾਸ ਹੈ ਗਿਆ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੋ ਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਗ ਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੋ ਭੰਗ ਹੈ ਮਦ ਪਾਰ ਛੰਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਣ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ਹਰ ਬਰਿਆ ਗਾਂਜੂ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਪਾਂਜੁ ਗਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਣ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰਿਆ ਖਾਂਡੂ ਵਰ ਨਰਿਆ ਮੰਡੂ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ਼ ਮੁਨਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਧਰਮ ਧਾਮ ਅੰਸ਼ ਜੇ ਅੰਗ ਆਸਨ ਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਦੋਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਤ

सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर दे कर सब बैरन कौ आज सिंगर पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम है शार्ड कोई अवर न त्याहू जो बर चाहो सुतम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भर आए मरण काल का त्रास ने भर आए हूँ जो सदा हमारे पछा सरिया सोजू करे हो रक्षा राख ले हम रख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा बपतरा काल पाई सब जुग अवतरा काल पाई कर बिजन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तुसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर बजानत चीटी ते गुंजर अस थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने गड़ गड़ के बड़ बड़ की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा दर्त दब दे अपार जब या करख कर तो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन दृढ़ सब धारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरा तंदरालम जानत भेद भेद अरे आलम।

सदा सदा तुदतियाय। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। श्लोक महला तीजा। हस्ती सिर ज्यों अंक सह अहरण ज्यों सिर दे,

मन तनया गैराख उभी सेव करे यों गुरमुख आप निवारी सब राज श्रेष्ठ काले नानक गुरमुख बुझिए जाय आपे नदर करे। महला तीजा।

सच तेर सच अकाल, सच तेरे करण है सर्व विचार। सचा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। सच लख लख करोड़, सच सब तान सच सब जो, सच तेरी सिफत सची सला, सच तेरी कुदरत सचे पातशाह। नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कत निकट में।

0: मन अंधे जन्म गवाया।
1: के वड़ा हुआ दुनीदार का संग्रह चलाया, अगे करने के तवाचे दल लेखा कर समझाया, थाउ नोहे पौंदी हूँ सुनिए क्या रुआया, मन अंधे जन्म गवाया।
0: दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया ला।

0: आकार है न लिये नर्क न जाइए। जो पिन सबके सदा देखा जे अगवाइए, जे लोड़े चंगा अपना ककुने सदाइए, जे जरवाना पर हराए जरवेश करे दियाइए। को रहे ना धरिये पाइए
1: पंच दिशावा निखड़ी मुझे जो

सच्चा सद एक तुझ में सच्चा सच बताया, जिसको दे तुझने सत्य तेरी सच कमाया, सच में सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया।

पंजे बदे मां बली कर सच्चा ठोवा अपने चरण जपायन विच दई खरोवा रोग सोग सब मिट गए

0: गुण गाओ अष्टपादी। पूरे गुर का सुनियो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेश। सास सास सिमरहु गोबिंद, मनि अंतर की उतरै चिंद। आस अनेत त्याग हो त्रांग, संत जना की तुहूर मन मांग। आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अगन सागर तरहो। हर तन के परले हो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारहु जीयो, गुण गोबिंद अमृत रस पीयो। चित चितवहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण किरपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोक है निकतार। सफल जीवन सफलता का संग, जाकर मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहत वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कै माते, नानक उतरे तिन कै साते। सारण योग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पहे सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पहे गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जिंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तहारी, नानक निभि खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावत हन एकागर चीत। सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसह प्राप्त होए। खेम शांत रित नवनित, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबके मध्य सगल ते उदास। सुंदर चतर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम वचन मन सुने। इहो निधान जपै मन कोय, सब जुग मह ताकि गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, इस जन आवै हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवार, दुलभ देह तत्काल उधार। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे सुमानी। दुख रोग दिन से भय भरम, साध नाम निर्मलता के कारम। सब ते ऊचता की शोभा बानी, नानक यह गुण नाम सुख मानी। सब ते ऊचता की शोभा बानी, नानक यह गुण नाम सुख मानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

गुण तेरे कहे न जानी अवगुण मेरे, कृपा जल देह नानक सारंग को। अगला बचन कीता होए, एदा अर्थ जिदन हो जाएगा कि जां ते जाते पाठ कथा नहीं, जां ते जिस तों जिस नाल जदों तुसी कृपा दा जल दियोगे, कृपा जल दे नानक सारंग को होए जां ते तेरे नाए वासा। जदों तुसी कृपा दियोगे उस कृपा दे नीर नाल जिस नाल तेरे नाम विच नानक दा निवास हो जाएगा। कृपा जल दियो जिदे विच असी डुब सकीए माण सकीए। आओ गुरमुखो, बाहर दी भटकना नू छड के अंतर आत्मे दी पूजा ते शब्द दी पूजा वल तुरिए। ते आरती करनी है ना, ते आरती उतारो ना, आरती विच शामिल हो जिहड़ी पहले ही उतर दी पई है। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन इनिया को बेनतियां प्रवान करिया जी। रात दे शब्द विच एक हरजन है ते दूजा साकत है। साकत हारा साधना जानिया है ते हरजन जिहड़ा वो नाम विच समाया होया है, एदी विचार होवेगी। आओ करो कृपा, बख्शो आशीष और उचारण करो जी। वाहे गुरु, सारे कृपा करो। वाहे गुरु,